दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में। ओ!

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: camera and action.
1: अरे वो लोग को शूट कर रहे हैं,
2: हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना।
4: या कम ऑन,
3: बॉल की शूटिंग हमारे बगैर?
5: कुड़ी